0: ప్రమాణాల దినోత్సవం సందర్భంగా
1: బిఐఎస్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వారి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का ये विशेष कार्यक्रम. हर दिन हम अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित कैसे होती है? विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की भूमिका और हमारे दैनिक जीवन की गुणवत्ता मानकों की उपयोगिता को समझेंगे. इसी विषय पर सुनते हैं भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साइंटिस्ट डी एवं जॉइंट डायरेक्टर श्री विवेक प्रकाश से सीमा कुमारी की बातचीत.

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी हैदराबाद के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के वैज्ञानिक डी एवं संयुक्त निदेशक श्री विवेक प्रकाश जी। भारतीय मानक ब्यूरो देश में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मानकीकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ISI मार्क, हॉल मार्किंग और गुणवत्ता मानकों के माध्यम से BIS उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी प्रोत्साहित करता है। हालांकि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विवेक जी को, जो कि हमें बताएंगे कि BIS की भूमिका, गुणवत्ता मानकों के महत्व, उपभोक्ता जागरूकता

0: और आम नागरिकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। विवेक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग BIS हैदराबाद ऑन AIR ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे।
0: जी, सबसे पहले श्रोताओं को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की प्रमुख भूमिका और इसके कार्यों के बारे में बताइए।
1: BIS की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। पहले इसको ISI के नाम से जाना जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। पहले BIS का काम केवल स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन करना था और उसके बाद BIS ने सर्टिफिकेशन का काम स्टार्ट किया एंड देन 2016 में BIS एक्ट के तहत BIS को नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। तो BIS के जो महत्वपूर्ण या फिर आप कह सकते हैं कोर एक्टिविटीज हैं वो है स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन में BIS विभिन्न वस्तुओं पे स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और फिर जो है हमारे पास ब्रांच ऑफिसेस हैं जो कि देश के सभी स्टेट्स में ब्रांच ऑफिसेस एस्टैब्लिश्ड हैं और ये जो है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का काम करती हैं जिससे हम मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस देते हैं और उनको ये सुनिश्चित करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो। इस तरीके से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन और क्वालिटी प्रोडक्ट के माध्यम से हम कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं।
0: जी, बाजार में जो उपलब्ध उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में BIS किस प्रकार योगदान देता है।
1: जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टैंडर्ड्स जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या टेस्टिंग क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स को अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करता है फिर हम उनको लाइसेंस देते हैं और लाइसेंस देने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। पहले हम उनका टेस्टिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी, ये सारी चीजें को हम विस्तृत रूप से जांच करते हैं और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम टेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी लैबोरेटरी में और तभी जाके हम उनको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ही कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा सकता है। तो ISI मार्क एक तरीके का थर्ड पार्टी एश्योरेंस है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी है। तो इससे कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस होता है जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और ISI मार्क या ISI चिन्ह देखते हैं तो उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और इट इज फिट फॉर यूज।
0: जी, बात अब हम करेंगे जो सोने और चांदी के आभूषण खरीदते समय हॉल मार्किंग होती है उसका क्या महत्व होता है और उपभोक्ता HUID के माध्यम से आभूषण की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है।
1: सोने के आभूषण जो आपको पता है कि बहुत महंगे हैं और इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसे कस्टमर्स चीट होते हैं, तो इस कारण BIS ने HUID जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और ये हर ज्वेलरी पे यूनिक है। तो पहले क्या होता है कि हम असाइंग सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और जो भी ज्वेलर्स हैं वो अपने ज्वेलरी को असाइंग सेंटर्स में भेजते हैं और उस पे टेस्ट होने के बाद ही HUID लगता है। और HUID का एक विशेष महत्व ये है कि वो यूनिक है हर ज्वेलरी के ऊपर और वो वेरीफाई कर सकते हैं BIS केयर ऐप पे। जब वो वेरीफाई HUID डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको ज्वेलरी का फोटो, वेट, प्योरिटी, ये सारी चीजें आपको BIS केयर ऐप के माध्यम से आपके पास आ जाएंगी और इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो प्योरिटी उसकी सही है।
0: जी, यानी ये एक प्रामाणिकता है,
1: प्रामाणिकता
0: अगर
1: है।
0: हाँ, कि आप जो सही चीजें खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। आजकल बाजार में नकली गुणवत्ता चिन्हों और भ्रामक दावों की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस करते हैं, उसमें हम यही बताते हैं कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसको वेरीफाई करें कि उसका चिन्ह जो लगा हुआ है प्रोडक्ट पे वो जेन्युइन है या नहीं। इसके लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है BIS केयर ऐप। इसमें अगर आप कोई भी जनरल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए प्रेशर कुकर है या फिर गैस स्टोव है, तो उसमें ISI नंबर रहेगा और नीचे उसका CML नंबर लिखेगा। तो जब भी आप मोबाइल केयर ऐप में वेरीफाई CML नंबर डालेंगे तो आपको कौन सा मैन्युफैक्चरर है, क्या प्रोडक्ट वो बना सकता है, क्या क्या वैरायटी है, ये सारी चीजें उसमें दर्शाई जाएंगी। तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका जेन्युइन है। साथ ही साथ वैसे ही जैसे आप सोने की आभूषण खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो उसमें भी आप वेरीफाई HUID जो कि यूनिक है हर ज्वेलरी पे, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ज्वेलरी टेस्ट अच्छे से किया गया है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है। और साथ ही साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर बिल होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में अगर लगता है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप बिल के माध्यम से BIS पे रिपोर्ट कर सकते हैं तो हम उस पर उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं।
0: जी, BIS द्वारा निर्धारित जो भारतीय मानक उद्योगों विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है।
1: हम लोग लगातार MSMEs को प्रोत्साहित करते हैं कि वो BIS का लाइसेंस लें। इसके लिए हमने कई विशेष छूट भी दे रखी है। जैसे हम लोग का एनुअल मार्किंग फीस होता है, तो अगर कोई माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है तो 80% ऑफ द डिस्काउंट है MSMEs के लिए, अगर कोई स्मॉल स्केल है तो 50% डिस्काउंट है। साथ ही साथ हमने अब लैब का रिलैक्सेशन भी कर दिया है। कई बार मैन्युफैक्चरर्स जो है उत्पाद तो बना लेते हैं पर उनके लिए कठिन होता है कि वो अपने इन हाउस टेस्ट फैसिलिटी डेवलप कर पाए क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इस कारण जो है हमने मैन्युफैक्चरर्स को छूट दी है कि वो थर्ड पार्टी लैबोरेटरी से भी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करा।

0: करा सकते हैं। तो ये सारी विशेष सुविधाएं दी गई हैं एमएसएमईज को भी इसके द्वारा।
1: जी, स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं में गुणवत्ता और मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बीआईएस की क्या-क्या पहले हैं?
0: बीएस का ये मानना है कि जो बच्चे हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ क्वालिटी, तो
1: जी
0: हम बच्चों को भी ये जागरूक करते हैं कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप बाजार में जाके प्रोडक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, और साथ साथ अपने घर में सोसाइटी में ये क्वालिटी का जो है कैंपेन है वो चला सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्कूलों में स्टैंडर्ड्स क्लब का स्थापना किया है। स्टैंडर्ड्स क्लब के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स उपलब्ध हैं, और हम उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स ये एक पत्रिका आती है, तो इसमें हमने बताया है कि स्टैंडर्ड्स में क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हम जांच करते हैं। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हैं कि उनके विषय में क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगते हैं और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या स्टैंडर्ड्स में हैं। तो बच्चे इसके माध्यम से कोरिलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स को अपने करिकुलम से।
1: अच्छा, जैसे कि अभी आपने बात किया लर्निंग थ्रू स्टैंडर्ड्स,
0: यस
1: ये जो किताब है ये क्या आप लोग प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उनको पता भी होना चाहिए कि स्कूल, कॉलेजों और खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये किताबें कैसे दी जा सकती हैं?
0: हमने स्टैंडर्ड्स क्लब बनाए रखा है
1: जी
0: और उसी स्कूल्स में हम ये पत्रिका प्रोवाइड करते हैं, और हमने ये सभी जगह जितने भी स्टैंडर्ड्स क्लब भारतवर्ष में बने हुए हैं तो बीआईएस ने सभी जगह पत्रिका दे रखी है।
1: मान लीजिए किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद की गुणवत्ता या फिर बीआईएस प्रमाणन को लेकर शिकायत हो, तो वह अपनी शिकायत कहाँ और किस प्रकार दर्ज करा सकता है?
0: यदि किसी उपभोक्ता को कोई भी शिकायत है क्वालिटी रिलेटेड, या फिर प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क ढंग से नहीं लगा हुआ है, या फिर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है पर उसमें आईएसआई नहीं लगा हुआ है, तो
1: जी
0: उनके पास दो प्लेटफॉर्म है। या तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जो कि बीआईएस कैर ऐप है, उसमें लॉज ए कंप्लेंट विद बीआईएस है, उसमें आप क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट की फोटो, आपका बिल, रसीद, जो भी आपके पास अवेलेबल एविडेंस है वो आप हमें जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं और उसमें फोटोज वगैरह डालते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है। साथ ही साथ आप हमें
1: जी
0: ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली हमारे ब्रांच ऑफिस में विजिट करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं।
1: जैसे मान लीजिए ये तो महानगर है, यहाँ पे आपके ऑफिस जो है सब लोग जानते हैं, जैसे छोटे शहर के लोग, छोटे गांव और कस्बों के लोग हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं?
0: तो उनको हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वो
1: जी
0: मोबाइल के माध्यम से जो बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो हमें पत्र भी लिख सकते हैं
1: जी
0: कि आपकी क्या शिकायत है, तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई
1: मतलब जो
0: करते
1: भी
0: हैं।
1: नजदीकी आपका स्टैंडर्ड
0: जो
1: मतलब
0: भी
1: ऑफिस
0: नजदीकी
1: है।
0: हमारा ब्रांच ऑफिस है,
1: जी जी
0: हमारे
1: जी
0: ब्रांच ऑफिस हर स्टेट में है, तो वहां पे उनको संपर्क करना पड़ेगा।
1: जी डिजिटल इंडिया का जमाना है तो डिजिटल तकनीक के इस दौर में उपभोक्ताओं तक तो गुणवत्ता संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए बीआईएस किन आधुनिक माध्यमों का प्रयोग कर रहा है?
0: हमने कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मान लीजिए आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, तो
1: जी
0: इसमें भी हमने कई तरह के प्रचार प्रसार किए हैं। साथ ही साथ बीआईएस केयर ऐप है तो हम कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं कि आप बीआईएस केयर ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मानक ऑनलाइन, तो इसमें भी आप हाउ टू डाउनलोड स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बीआईएस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्वालिटी के जो स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
1: क्योंकि सब जगह एआई की बात चल रही है, तो हम भी ये आपसे जानना चाहेंगे कि बीआईएस जो है वो एआई को अपने काम को कन्वीनियंट बनाने में कैसे उपयोग कर रहा है और श्रोताओं को जागरूक करने में भी कैसे कर रहा है?
0: एआई का यूज बीआईएस, वही जैसे मैंने कहा कि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो
1: जी
0: कि मानक ऑनलाइन है या फिर बीआईएस की वेबसाइट है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कंपलसरी सर्टिफिकेशन है, या फिर मुहरांकन जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो सकती है। तो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप बीआईएस की साइट पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हमने जो टूल बनाया है वो बीआईएस केयर ऐप है, ये एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर अवेयरनेस टूल है, और जब भी कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। आप अगर सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है उच्च क्वालिटी का है, उसकी प्योरिटी क्या है। तो ये सारी चीजें आप ऑन द स्पॉट ज्वेलरी खरीदते समय, प्रोडक्ट खरीदते समय आप वेरीफाई कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताई थी कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को लेके आज ये साक्षात्कार जो है वो कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है।
0: वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता
1: जी
0: है। इस साल भी 14 अक्टूबर 2026 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मना रही है। तो इसके पीछे मैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही विश्व युद्ध दो हुआ था उसके बाद जो है विश्व में ये कोशिश की गई थी कि जो भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं अलग अलग देशों में उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने जो कि सभी देश अनुपालन करें उसका। तो इसके लिए 14 अक्टूबर 1946 को

0: 25 देशों ने लंदन में कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद ही आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। तो इस कारण हर वर्ष 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर पाएं कि स्टैंडर्ड्स हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड्स हमें दिखता नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड्स जो है हर पार्ट में अपना रोल प्ले करता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ
1: जी
0: इस,
1: बिल्कुल
0: जैसे कि आप मोबाइल फोन चार्जर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होता इसके ऊपर और इसके डायमेंशंस को हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते, तो आप देखिए कि हर मोबाइल फोन चार्जर के लिए आपको अलग अलग सॉकेट्स का यूज करना पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: आपको लगता भी नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक सॉकेट चाहिए जिसमें आप अपने चार्जर को प्लग इन कर पाए। तो एक छोटा सा कार्य जो कि बहुत सरलता से अभी हम कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये खूबसूरती है स्टैंडर्ड्स की, वो दिखाई नहीं देते हैं पर वो हमारे काम को बहुत सरल बनाते
1: जी,
0: हैं,
1: पीछे से उनका कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता
0: महत्वपूर्ण
1: है।
0: है।
1: अजी से हमारे श्रोताओं को जानना भी चाहिए और आप बता भी रहे हैं। चलते चलते समय इशारा कर रहा है कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ें। आप आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो खरीदारी करते समय गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के प्रति अधिक जागरूक रहें?
0: देखिए, BIS का हमेशा से यही मोटो रहा है कि वो क्वालिटी जो एनवायरनमेंट है, क्वालिटी इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा दें। इसके लिए हम कई तरह के जतन कर रहे हैं, कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम कंज्यूमर अवेयरनेस को बहुत एग्रेसिवली हम इसको परस्यू करते हैं। इसमें हम कंज्यूमर्स को बता रहे हैं कि आप जब भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसके पीछे कौन सी स्टैंडर्ड है या फिर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको उसके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कंज्यूमर सशक्त है तभी वो अपने लिए राइट डिसीजन ले पाता है, तभी वो
1: जी
0: अपने प्रोडक्ट को
1: बिल्कुल
0: अच्छे से चूज कर पाता है। तो हम विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे यही आवेदन करते हैं, यही अनुरोध करते हैं अपने कंज्यूमर से कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीदें तो वेरीफाई करें कि वो अच्छी क्वालिटी का है, उसका चिन्ह का वेरीफाई करें और तभी प्रोडक्ट खरीदें।
1: जागरूक जनता ही सशक्त भारत की
0: यस
1: पहचान है।
0: जी,
1: जी
0: बिल्कुल
1: हाँ श्रोताओं, आज की बातचीत से यह स्पष्ट है कि गुणवत्ता मानकों की जानकारी रखना और प्रमाणित उत्पादों का चयन करना सुरक्षित खरीदारी तथा जागरूक उपभोक्ता बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी संदेश के साथ विवेक प्रकाश जी, आपने वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे बीआईएस के साइंटिस्ट डी एवं जॉइंट डायरेक्टर श्री विवेक प्रकाश से सीमा कुमारी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया।
1: यस, दैट वाज द इंटरव्यू बाय सीमा कुमारी ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, इंटरव्यू विद साइंटिस्ट डी जॉइंट डायरेक्टर ऑफ बीआईएस श्री विवेक प्रकाश बाय सीमा कुमारी।
2: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 विद मी RJ नम्रता। ड्रॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, walk over to your window, take a deep breath and let your imagination fly away with me, because today we are escaping into the concrete jungle. We are heading straight into the arms of a land where the mountains touch the heavens, where the air is pure and clouds wrap around the hills like a cozy blanket. Today we are celebrating the crown jewel of the Northeast, the breathtaking, magical and completely organic wonderland, Sikkim. Let's talk more about the beautiful state Sikkim after a beautiful track.

0: రెయిన్బో 101.9
1: का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में

0: लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं, जो अब बढ़कर लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की दो विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said that trust and cyber security are becoming increasingly important in the global semiconductor value chain alongside cost considerations. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Vaishnav said that India aims to position itself as a trusted partner in semiconductor design, manufacturing and testing of finished products. The minister emphasized that developing a complete ecosystem is essential for sustainable manufacturing.
3: Materials are very important because that ecosystem takes a lot of time and effort to build. So we have to put in that extra effort to get that capability in our country in terms of understanding of the materials, handling of the materials, manufacturing them, processing them, storing them, using them in the chips or every other manufacturing process. And making sure that we develop an ecosystem which becomes good for us, good for the world.
2: India has recorded a 21% decline in new tuberculosis cases between 2015 and 2024, compared to a 12% global decline. The country's TB treatment coverage has reached 92% against the global average of 78%. The government has intensified efforts towards eliminating tuberculosis through expanded screening, advanced

में कितने सारे हर्डल्स हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसी वर्कप्लेस की कहानी सुनाने वाली हूं जिसे सुनकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। बात है 1974 की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एक यंग लड़की पढ़ रही थी जो पूरे डिपार्टमेंट में अकेली फीमेल स्टूडेंट थी। एक दिन उन्होंने कैंपस के नोटिस बोर्ड पर इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जो आज टाटा मोटर्स है, का एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखा। पर उस एड के बिल्कुल नीचे एक लाइन लिखी थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, यानी लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती। किसी और को गुस्सा आता है और वो छोड़ देता है, पर इस 23 साल की लड़की ने सीधा एक पोस्टकार्ड उठाया और देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा को एक चिट्ठी लिख दी। उन्होंने लिखा कि आपकी कंपनी देश के बदलाव की बात करती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ये चिट्ठी देखकर JRD टाटा ने ना सिर्फ उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, बल्कि कंपनी के सारे रूल्स बदल दिए और वो बनी टेल्को की सबसे पहली फीमेल इंजीनियर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी सुधा मूर्ति। चलिए इस कमाल की पावर और इंस्पिरेशन के साथ सुनते हैं आज का ये खूबसूरत ट्रैक।

तुम्हारे पास दो आम हैं और तुम दोनों खुद खा लेती हो तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस है, पर अगर तुम एक आम किसी भूखे को दे देते तो वो इंसानियत है। बस यही छोटी सी बात उनके दिमाग में ऐसी बैठी कि आगे चलकर जब उनके पास करोड़ों रुपए आए तो उन्होंने उसे बैंक्स में रखने के बजाय देश के हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई और शिफा में लगा दिए। इट्स ग्रेट राइट। सो लेट्स लिसन टू अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे नम्रता।

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: మీట్ ద స్టార్.
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है.
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: दोस्तों 101.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नायरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नायरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। सामिन इकराम, प्रोग्राम का आगाज होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश होगी मोहम्मद उसामा की। फिर आप मत सहल हमें जानो टॉक के तहत सुनेंगे सर सैयद अहमद खान की फिक्र शख्सियत पर मौलाना हाली का असर। तहरीर पेशकश होगी खैरुन्निसा अलीम साहबा की। उसके बाद आप प्रोग्राम गीत सुर लेका तेजा में सुनेंगे खूबसूरत और प्यार भरे फिल्मी नगमे और प्याम शब के साथ नरंग इख्तिताम पजीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए नरंग का आगाज करते हैं हर्फ ताबिंदा से। लीजिए समात कीजिए हर्फ ताबिंदा। तहरीर पेशकश है मोहम्मद उसामा की।
1: मफाद परस्ती एक ऐसी सिफत है जो इंसान को खुदगर्जी और अखलाकी गिरावट की तरफ ले जाती है, जिसमें इंसान हर काम अपने जाती फायदे के लिए करता है, चाहे उसके नतीजे में दूसरों को नुकसान ही क्यों न हो। आज के दौर में खुदगर्जी ने माशरे को जड़ों से कमजोर कर दिया है और इंसानी रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। मुनाफिक और खुदपरस्त दोस्तों की हमदर्दियां दुश्मनों की तलवारों से ज्यादा खतरनाक होती है। किसी शायर ने कहा है, सांप के काटने से मैं डरता नहीं, सांप के काटने से मैं डरता नहीं, हां मगर सांप वो आस्तीन ही न हो। इंसान फितरी तौर पर एक समाजी मखलूक है और इसे दूसरों

0: दूसरों के साथ मिलकर रहना होता है, लेकिन जब वो सिर्फ अपने फायदे को तरजीह देने लगता है तो माशरती तवाजुन यानी सोशल बैलेंस बिगड़ जाता है। मफाद परस्ती की वजह से लोग एक दूसरे पर एतमाद खो देते हैं, भाईचारे की फजा खत्म हो जाती है। इसलिए मफाद परस्ती न सिर्फ फर्द बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह है। जब हुक्मरां, ताजिर या आम शहरी अपने ज़ाती फायदे को तरजीह देते हैं तो इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, समाज तरक्की के बजाय जवाल की तरफ बढ़ने लगता है। साहिल लुधियानवी ने कहा है, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ये शेर हमारे माशरे की तल्ख हकीकत को जाहिर करता है कि लोग सिर्फ अपने फायदे के वक्त साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में किनारा कश हो जाते हैं। मफाद परस्ती से बचने के लिए हमें अपने अंदर इखलाक इकदार मॉरल वैल्यूज को फ़रोग देना होगा। हमें चाहिए कि हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, सच्चाई और इंसाफ को अपनाएं और अपने ज़ाती फ़ायदे के बजाय इज्तमाई भलाई को तरजीह दें। अगर हर फर्द अपने किरदार को बेहतर बनाए तो माशरा खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने एक शेर में इस बात की तरफ इशारा किया है, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आखिर में ये कहना बजा होगा कि मफाद परस्ती एक ऐसा नासूर है जिसे ख़त्म किए बगैर एक सेहतमंद माशरा कायम नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम खुदगर्जी को तर्क करें और एक खुशहाल माशरे की बुनियाद रखें।
1: सामिन इकराम, अभी आपने सुना हरफ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश थी मोहम्मद उसामा की। जी दोस्तों, मफाद परस्ती के बग़ैर ही समाज तरक्की कर सकता है। मफाद परस्ती समाज को हमेशा तनज़ुली की तरफ ले जाती है, तो इसीलिए हमें भी मफाद परस्ती से बचना चाहिए। और सामिन इकराम, और अब आइए सुनते हैं मत सहल हमें जानो टॉक, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र व शख्सियत पर मौना हाली का असर इस टॉक को की तहरीर व पेशकश है खैरुन निसा अलीम साहबा की। लेकिन इस टॉक पर जाने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं।

0: FM Rainbow 101.9.
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
2: जी दोस्तों, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भी खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरों को भी हम नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप गाड़ी लेकर बाहर निकलें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई घर में है जो आपका मुंतज़िर।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं प्यार भरे फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म आमने सामने से था और जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। दोस्तों, हम पहले ही बात कर रहे थे कि आज यानी 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, यानी आलमी यौमे मेयारात। दोस्तों, स्टैंडर्ड यानी मेयार का हमारी ज़िंदगी में क्या असर होता है, चाहे वो मेयारी चीज़ें हों, चाहे वो मेयारी शख्सियात हो, चाहे वो मेयारी लोग हों, तो मेयार हमारी ज़िंदगी पे यकीनन असर डालता है। तो आज के इस ख़ास दिन पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे क्यों मनाया जाता है, और उसी के सिलसिले में दोस्तों अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो महसूस होगा कि मेयारात हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर हिस्से से जुड़े हुए हैं। सुबह आँख खुलते ही घड़ी देखने से पहले लेकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने तक, नाश्ते में पैकशुदा चीज़ें खाने से लेकर दफ्तर या स्कूल जाने तक, हर जगह किसी न किसी तरह मेयार की अहमियत सामने आती है। मिसाल के तौर पर अगर मुख्तलिफ मुल्कों में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन और दूसरे बरकी आलात के लिए मुश्तरका तकनीकी उसूल ना हों तो उनकी तैयारी, हिफाजत और एक दूसरे के साथ मुताबकत में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हिफाजती निज़ाम, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात और इमारतों में लगाए जाने वाले बरकी निज़ाम के लिए भी मुनासिब मेयारात अहम होते हैं। यहाँ तक कि खुराक की पैकिंग, प्रोडक्ट पर दर्ज मालूमात और वज़न व पैमाइश के दुरुस्त होने का ताल्लुक भी कंज्यूमर के एतमाद से है। और हाँ, मेयार का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ अच्छी महंगी हो वही अच्छी होगी। असल बात यह है कि कंज्यूमर को या सारिफ को जो चीज़ दी जा रही है वो अपने वादे और मकसद के मुताबिक होना चाहिए। दोस्तों, हम भी अपने मकसद से भटकना नहीं चाहते और आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। लीजिए, समाप्त फरमाइए।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीला सुरीले गाते जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी आपने फिल्म शागिर्द से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, आज गीत सुरीले गाता जा में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में, यानी आलमी यौम मेयार के बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही है सामईन आपसे। सामईन, आइए एक छोटी सी सूरत हाल का तसव्वुर करते हैं। दो दोस्त बाजार जाते हैं। एक दोस्त सस्ती चीज़ खरीद कर खुश होता है, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ी तहकीक करके, थोड़ी रिसर्च करके एक ऐसी चीज़ ख़रीदता है जिसकी हिफाजत, कारकर्दगी और मेयार के बारे में मुनासिब मालूमात मौजूद है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किसने बेहतर फैसला किया। इसका जवाब सिर्फ कीमत देखकर नहीं दिया जा सकता। ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों की कारकर्दगी, हिफाजत, पायदारी और ज़रूरत के मुताबिक मौजूनियत का जायज़ा लिया जाए। दोस्तों, यही वो शऊर है जो हमें एक समझदार कंज्यूमर यानी सारिफ बनाता है। ख़रीदारी करते वक्त सिर्फ इश्तहार, पैकिंग या कम कीमत से मुतासर होने के बजाय मालूमात पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी हिफाजती निशानात देखना, वारंटी की शराइत समझना और मोतबर दुकान से ख़रीदारी करना भी अहम है, क्योंकि अच्छा इंतखाब सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम नहीं बल्कि अपने पैसे की सही कदर हासिल करने का नाम है अच्छा इंतखाब, क्योंकि चमकता जो नज़र आता वो सब सोना नहीं होता।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत और प्यार भरे फिल्मी गीत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि मेयार या स्टैंडर्ड इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं और आज का जो दिन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हर चीज़ के मेयार की तरह शायरी का भी एक मेयार होता है और लोग मेयारी शायरी सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा सामेईन कि शायरों के साथ एक मजबूरी है कि अगर वो कुछ शायरी लिख लेते हैं या शेर कह लेते हैं तो उनको बड़ी बेचैनी रहती है कि वो शेर तो किसी न किसी को सुनाना चाहते हैं, कैसे भी कोई एक सामे या सुनने वाला ढूंढते रहते हैं और वो बेचैनी वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, नहीं मेरा शेर कोई तो सुने। तो एक शायर साहब जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने जो है कोई शेर लिखा था, तब वो सुनाने के लिए बेचैन थे, कोई मिल नहीं रहा था। मुश्किल से एक मुसाफिर से उन्होंने अपना मतलब तारुफ कराया और थोड़ा मामलात को आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने अपने तारुफ में ये भी कहा, जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं शायर हूँ तो सामने वाले मुसाफिर ने फौरन ही जवाब दे दिया, भाई साहब मैं बहरा हूँ। तो ये थी लतीफ़ों की दुनिया दोस्तों, लेकिन मेयार हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे शायरी हो, चाहे चीज़ें हो, अशिया हो या दूसरी कोई भी चीज़ हो। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माहिरीन, इंजीनियर, साइंसदान और दूसरे मुतल्लिका अफराद मिलकर ऐसे मेयारात तैयार करते हैं जिनसे मसनूआत और खिदमात और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका उसूल कायम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो इन माहिरीन की कोशिशों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन यानी IEC और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU जैसे इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को आलमी यौम मेयार के मौके पर इन माहिरीन की मुश्तरका कोशिशों यानी कॉमन एफर्ट्स को सराहा जाता है। आज का पैगाम ये है कि जब लोग और इदारे मिलकर वाज़े उसूल बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मसनूआत और प्रोडक्ट की हिफाजत, खिदमात के मेयार, तकनीकी मुताबिकत और कंज्यूमर के एतमाद को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आज के दौर में जब दुनिया एक दूसरे से टेक्नोलॉजी, तजारत और टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए जुड़ी हुई है तो कॉमन जो स्टैंडर्ड है, मुश्तरका मेयारात जो है, उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। दोस्तों, इस उनवान पे, इस मौजू पे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गातेजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। और आज अभी आपने जो नगमा सुना वो फिल्म मिलन का था, जिसे गाया था मुकेश ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। दोस्तों, आज हम नगमों के बीच बीच में, गीतों के बीच बीच में बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी आलमी यौम मेयारात के बारे में गुफ्तगू हमारी चल रही है। सामीन, तो सामीन, मेयार की बात हो और सेहत व हिफाजत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम रोज़ाना खाने पीने की अशिया इस्तेमाल

करते हैं, बिजली के आलात चलाते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ तिब्बी सहूलतों से फ़ायदा उठाते हैं। इन तमाम शोबों में मुनासिब हिफाजती उसूल मेयारात की अहमियत बहुत

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आप इन नगमों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे और माजी के गलियारों में भी खो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे नगमे इंसान को ज़रूर ऐसी यादों में ले जाते हैं जो बहुत सारी चीज़ें ताज़ा कर देती हैं। तो दोस्तों, फिल्म और नगमों की बात हो रही है और इन गीतों के बीच में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में, यानी आलमी यौम मेयारात के बारे में। दोस्तों, अब मैं नौजवान साथियों और जो अज़ीज़ तलबा हैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप मुस्तकबिल के साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर, उस्ताद, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी के माहिर बन सकते हैं। आपके लिए मेयार की अहमियत समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की दुनिया में सिर्फ कोई नई चीज़ ईजाद करना काफ़ी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि वो चीज़ महफूज हो, लोगों के काम आए, काबिल एतमाद हो और माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो तजुर्बात में दुरुस्त पैमाइश की अहमियत समझें। अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो मालूमात की दुरुस्तगी और डिजिटल हिफाजत पर तवज्जो दें। और अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अपने ख़रीदारों को मेयारी प्रोडक्ट और ईमानदाराना खिदमात फराहम करने की कोशिश करें। याद रखिए, कामयाबी सिर्फ इस बात में नहीं कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि इसमें भी है कि हम अपना काम कितनी जिम्मेदारी और मेयार के साथ करते हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत और प्यार भरे दिलकश नगमे। और अभी आपने जो जो नगमा सुना, जो गीत सुना, वो फिल्म आशिकी का था, जिसे गाया था कुमार शानू ने और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। दोस्तों, आज वर्ल्ड स्टैंडर्स डे है और हम गीत सुरीले गाता जा में बात कर रहे हैं नगमों के बीच बीच में इसी मौजू पर कि आलमी योम मेयार क्यों मनाया जाता है और हमारी ज़िंदगी में मेयार की, स्टैंडर्ड की क्या अहमियत है, उन तमाम चीज़ों का हमें किस हद तक ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ ज़िंदगी के हर पहलू में उस चीज़ को हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और अब बात उन तमाम सामेईन से जो बरसों के तजुर्बे से ज़िंदगी की हकीकत समझ चुके हैं। आपने अपने तजुर्बे से ज़रूर देखा होगा कि जो चीज़ अच्छी तरह बनाई जाए और एहतियात से इस्तेमाल की जाए, वो ज़्यादा अरसे तक साथ देती है। लेकिन आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में सिर्फ तजुर्बा काफ़ी नहीं है। नई मसनूआत, नई टेक्नोलॉजी और नई सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल करना भी बेहद ज़रूरी है। ख़रीदारी करते वक्त रसीद ज़रूर लीजिए, प्रोडक्ट की एक्सपायरी और पैकेजिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए और बिजली

ये आकाशवाणी हैदराबाद है दोस्तों, आप प्रोग्राम गीत सुरीले गातेजा में सुन रहे हैं। खूबसूरत फिल्मी नगमे और अब मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मंजिल भी हमारी करीब आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम नगमों के बीच बात कर रहे थे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी आलमी यौम मेयारात के बारे में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आलमी यौम मेयारात के हवाले से जाना कि मेयार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अहम किरदार अदा करता है। और आखिर में छोटी सी बात याद रखिए, अच्छा मेयार एतमाद पैदा करता है, एतमाद रिश्तों और कारोबार को मजबूत बनाता है और जिम्मेदारी एक बेहतर माशरे की बुनियाद बनती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छे मेयार की बिल्कुल भी फिक्र करें और ज़रूर ज़रूरी है कि आप मेयार का ख्याल करें। और इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है प्याम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब ज़ैदी साहब की। तो लीजिए, समाप्त कीजिए प्याम शब।

दोस्तों, वाकई माँ की नेमत कितनी बड़ी नेमत है, ये उनसे पूछिए जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए माँ की कदर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली बज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन

संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरु, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि मामले की आगे का जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 102.1 MHz पर। गीत मेरे मनमीत आपके लिए, स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से, लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनें।

फिल्म सच्चाई का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इससे पहले आपने फिल्म कुदरत का गीत सुना परवीन सुल्ताना की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में थी यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। फिलहाल इस चैनल पर अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से हर साल 35 लाख यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदम दारचा सड़क भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सड़क लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी और क्षेत्र में आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वे 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इनसे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधन

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही खूबसूरत गीत हैं। पहला गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म बदलते रिश्ते से।

जरा पास बैठो तो कहें दिल की बात तुमसे, जरा पास बैठो तो कहें दिल की बात, सुनो सुनो धड़कनों की ये महकती सी रात, नजर से नजर मिले तो करूं इजहार, यही तो है चाहत और यही है प्यार।

सोचो कि बस हम होते और होती हमारी मोहब्बत की बातें, है ना? काश हमारी जिंदगी में भी ऐसे हसीन दिन रात होते। हम होते और होती हमारी मोहब्बत की बातें, काश हमारी जिंदगी में भी ऐसे हसीन दिन रात होते। ना कोई दूरियां होती, नहीं उदास लम्हे होते। काश ऐसा होता

तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ना जाने कब से जानती हूं तुम्हें। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे न जाने कब से जानती हूं तुम्हें, जैसे सदियों पुरानी कोई अधूरी कहानी हो। अजनबी होकर भी तुम इतने अपने से क्यों लगते हो? ऐसा लगता है कि बस हर धड़कन में तुम्हारी ही रवानी हो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा।

राह सीधी थी वो अचानक संभल गई। न तुम बदले न हम बदले, मगर न जाने क्यों एक ही लम्हे में दिल की हर बात अचानक बदल गई।

बस मेरे पास रहना तुम हर पल, परछाई बनकर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मोहब्बत पाकर। दूरियों से डर नहीं लगता मुझे अब जरा सा भी, जब से तुम बस गए हो मेरे दिल की धड़कन बनकर।

दोस्तों अभी हमने हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक पकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में 29 देशों के 33 राजदूतों और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, स्वदेशी तकनीकों और आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years, from 2026-27 to 2030-31, with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi yesterday. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. Pension schemes for senior citizens and widows, as well as the family benefit scheme, will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance.
3: The cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
2: PM Modi will launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh called for stronger industry partnerships to help promising student innovators improve their products, respond to market requirements and explore commercial opportunities. The minister said this while felicitating young innovators at the 12th National Level Exhibition and Project Competition (NLEPC) under Inspire Manak in New Delhi. The Pension Fund Regulatory and Development Authority and NPCI Bheem Services Limited have launched Tatkal NPS on the Bheem Payments app. The new feature allows eligible citizens to open a national pension system account in just 3 steps using existing bank verified KYC and UPI, eliminating the need for branch visits or fresh paperwork. The Department of Agriculture and Farmers Welfare will celebrate the national level celebration of Mahila Kisan Divas 2026 in New Delhi today to recognize the women's contribution to Indian agriculture. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that women, being an integral part of India's agricultural system, play several pivotal roles from sowing, transplanting and harvesting to livestock management, seed conservation and natural resource management. The ministry said that the event will also coincide with the United Nations International Day of Rural Women, which bears the theme Role of Women Farmers in Building Developed Agriculture and a Developed India. The Indian Navy has completed its maiden command of a Combined Maritime Forces CMF Task Force with the relinquishment of command of Combined Task Force 154, CTF 154, at a ceremony held in Manama, Bahrain yesterday. The Defence Ministry said that the 8-month tenure marked a significant milestone in India's growing contribution to multinational maritime training, capacity building and collaborative maritime security. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the 4th T20 International in Hyderabad tonight. Chasing a target of 248 runs set by West Indies, India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was top scored with 56 runs. For West Indies, Kemo Paul scalped 5 wickets. Earlier, put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in stipulated 20 overs.

समय हुआ है 1:11 और 5 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे आप बहुत ही खूबसूरत गीत।

आईना देखूं तो अक्स तुम्हारा दिखता है, आईना देखूं तो अक्स तुम्हारा दिखता है, किताब खोलूं तो तुम्हारा नाम लिखती हूं। ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे कि हवा के हर झोंके में अब मुझे साया तुम्हारा ही मिलता है।

कभी आहट पे चौंक उठती हूं तो कभी हवा से पूछती हूं, कभी आहट पे चौंक उठती हूं तो कभी हवा से पूछती हूं, तुम पास नहीं हो फिर भी हर पल मैं तुम्हें क्यों ढूंढती हूं। ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे, ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में, कि खुद को भूलकर मैं बस तुम्हारी होकर जीती हूं।

आंखें अब तो सामने आओ, इम्तिहान न लो मेरे सादे दिल का, अगर मोहब्बत है हमसे तो आके हमसे मिल जाओ।

तुमसे मिलकर खो गए हम, ना जाने कुछ इस तरह। तुमसे मिलकर खो गए हम, ना जाने कुछ इस तरह कि अब हमारा खुद पर ही कोई जोर नहीं चलता। जमाने भर की खुशियां अपनी जगह हैं, मगर तुम्हारे बिना अब दिल का एक पल भी हमसे नहीं संभलता।

बहार बन के आए हो तुम मेरी सोनी जिंदगी में, बहार बन के आए हो तुम मेरी सोनी जिंदगी में, जैसे कोई महकता हुआ ख्वाब उतर आया हो इन बंद आंखों में। तुमसे मिलकर खिले हैं दिल के सोए हुए सारे अरमां, अब तो हर लम्हा नूर ही नूर है मेरी हर एक बंदगी में।

गुनाह कर बैठी आंखें तुमसे नैन मिलाकर, गुनाह कर बैठी आंखें तुमसे नैन मिलाकर, अब ये दिल तड़पता है हर पल तुमको भुलाकर। कैसी ये कशिश है तुम्हारी इन नजरों में कि हम खुद को ही खो बैठे तुम्हें अपना बनाकर।

दोस्तों, लेकिन आपको सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम मिलेंगे तो बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम रात सुर में लेकर। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 39% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

प्यार करता कौन है ये तो बस हो जाता है, प्यार करता कौन है ये तो बस हो जाता है, दिल खोने वाले को पता भी नहीं चलता और कोई बहुत खास हो जाता है। ये वो खुशबू है जो हवाओं में बिखर जाती है, इंसान खुद को भूलकर किसी और के एहसास में खो जाता है।

मोहब्बत में दुनिया का डर कैसा, जब दिल लगा लिया तो फिर मुकर जाना कैसा। जमाने की बंदिशें तो आती रहेंगी, इश्क के रास्ते में पीछे फिर कदम बढ़ाना कैसा।

एक ही हादसे ने बदल कर रख दी जिंदगी, एक ही हादसे ने बदल कर रख दी जिंदगी। बहुत याद आती है वो अधूरी मुलाकात तुम्हारी। तुम तो मुसाफिर थे, रास्ता बदल गए अपना, पर आज भी ठहर गई है वहीं सारी कायनात हमारी।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 3 बजे के बाद का सफर यानी 3:10 के बाद आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है और मैं अमन यादव के साथ आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी नीमू

0: पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट एंड डेडिकेट टू द नेशन 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 3,350 करोड़ रुपीज इन लद्दाख टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। The projects aim to strengthen connectivity, improve in energy infrastructure, conserve cultural heritage, and enhance water security in the region. He will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. आप सबका स्वागत करती हूं और मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार. रात के 3:11 और 30 सेकंड हुए हैं. जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब दिल अक्सर अतीत की गलियों में टहलने निकल जाता है. सोचिए जरा वो कॉलेज के दिन, वो बेफिक्री रातें और वो वादे जो हमने कभी किए थे. आज कुछ प्यार भरी बातों से और भी बातें जोड़ेंगे और भी प्यारे प्यारे गीतों को सुनेंगे. लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की कुली फिल्म के इस गीत के साथ.

आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस यही ख्याल आता है, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। क्या अपने भी उस पुराने दोस्त या प्यार को याद किया है जिसे सालों से कभी बात नहीं हुई? अगर आज इस वक्त वो याद आ रहा है तो इस गाने के साथ उसे या उस मासूम वक्त को फिर से याद कर लीजिए।

हमराही के इस मोड़ पर बात करते हैं दिल की उस पहली धड़कन की। याद है जब किसी एक खास इंसान का ख्याल आते ही सीने में हलचल बढ़ जाती थी। रात के सन्नाटे में जब सिर्फ आपकी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है तब दिल की धड़कन और भी साफ महसूस होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है हम राही. जब रात गहरी होती है तो दिल किसी अपने की मौजूदगी तलाशता है. एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, जहां कोई बनावट ना हो. जब पूरी दुनिया के से कटने का मन करे तब अपना दिल ही सबसे सुरक्षित घर बनता है.

रात का जो सन्नाटा या जितनी शांति होती है उतना ही ये हमारे अंदर की सच को जगाता है। जो लोग शिद्दत से प्यार करते हैं, शिद्दत से उस प्यार को निभाते हैं, उन्हें जमाने का कोई डर नहीं होता।

कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता नया हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अमर और पुराना ही महसूस होता है, जैसे युग युग का साथ हो। हमराही का मतलब ही यही है कि सफर में कोई ऐसा हो जो हर कदम पर साथ चले।

और छोड़ के जा रही हूँ, मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। जी हाँ, छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, और मुलाकात होगी अब आपसे 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। मुझे दीजिए अनुमति और सुनिए ये प्यारा सा गीत। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव

0: ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. He will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म, फिल्म ही फिल्म से मन्ना दे की आवाज़ में गीतकार इंदिवर।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म अर्पण से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कलाकार से सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म तकदीर से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आगे बढ़ते हैं, यानी समय हो गया है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति का। जी हाँ, ये है अनुराधा पोटवाल की आवाज में। तो आइए सुनते हैं, और अब मेरी मुलाकात होगी आपसे 5:10 पर। जी हाँ, प्रोग्राम भोर सुहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबे निम्पो पदुम दारचा सड़क मार्ग, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डहा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी

0: अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक रचनात्मक और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और ये तुरंत बंद होने चाहिए। केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों के विद्यार्थियों को 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये की से ज्यादा की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The PM will also address the gathering on the occasion. India finished 4th in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities.

समय हो गया है 5:11 और 6 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

जीवन एक सुंदर नृत्य की तरह है, जहाँ कभी खुशियों की धुन बजती है तो कभी चुनौतियों की ताल पर कदम मिलाने पड़ते हैं। जो इंसान अपने मन में उत्साह, विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, वह मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है।

नई सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है। बीते कल में कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ ऐसा जिसे हम बदलना चाहते हो, आज हमारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका है। इसलिए डर कर नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी का स्वागत कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब नेचर की सुंदरता, अपनों का साथ और मन की शांति हमें एहसास कराते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण, ये सब हमें सिखाते हैं कि खुशियाँ हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छिपी होती हैं।